विचार विश्लेषण मनोरंजन साहित्य कला संस्कृति पर्यटन र विकास कला जनपक्षीय आवाज हम रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: 我来公里也把你拿去给俺好哥，我站苗路，我站了苗路，没完个垃圾我站着顶着过谁玩的过来牛你说来看俺我先管你好我那啥我那都看我再给苗路我来再问心里
1: 耶他为了经济问题他现在开始去他为了我一个相关的项目呢他背地是 rental and catching service 这里可能白眼睛
0: 哎喂抓一个喂好喂行啊我现在好大
2: हर घर के सेवा में संपूर्ण नया सामान को साथ में सदरमुकाम सरीकोट में विवाह व्रत बंध सेमिनार सभा सम्मेलन उत्सव पिकनिक जस्ता विभिन्न कार्यक्रम का लागि हामीलाई सम्झन होस् हामी आवश्यक परे भोजपति तथा शुभ कार्य का लागि अनुभवी तथा दक्ष कुक वेटर मसालजी उपलब्ध गराउँदछौं यहाँ आवश्यक चाइनीज टेन्ट चायर कुर्सी भाँडाकुँडा कार्पेट म्यूजिक सिस्टम बत्ती लगायत का सामान भाड़ा में पाइन का साथ ही हाफ तथा फुल क्याटरिङ पनि गरिन्छ
3: ग्राहकको सन्तुष्टि नै हाम्रो सफलता सम्पर्कको लागि कुमार श्रेष्ठ 9852428883 9842228883 र कृष्ण श्रेष्ठ 9864002041
4: बैतेश्वर रेन्टल एन्ड क्याटरिङ सर्भिस चरिकोट दोलखा
5: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज

0: बड़ो सोल्टी और किनाव चले आज उन्हें ले ले हिलो मनार पसंद पड़े
1: ओ उन्हें ले हिलो छान तो मन खाई आधा अन्य चेरो वो पनी आवने वाला नहीं था
0: खाई आए तो
2: मेलो शुरू करने वाला भो भाई तलाग आए पुगी ना

मनोरंजन साहित्य और कला, संस्कृति पर्यटन और विकास कला की जनपक्षीय आवाज हमरो रेडियो 103.4 मेगाहर्ट्ज़।

0: মন্ত্ৰী দুৰ্গা পূজাই ৰুমা নাধিকৃত কৰা কথা নেপাল অণ্ডাৰ 19 মহিলা এছিয়া কাপৰ লাগি চনত
1: श्रद्धालु भक्तजनहरूमा हार्दिक निमन्त्रणा। दोलखा जिल्ला गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर 8 खारे कसेरी स्थित विश्वरूप धाममा पवित्र श्रावण महिनाभर भव्य धार्मिक मेला तथा विशेष पूजा आराधनाको आयोजना गरिएको हुँदा पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि र आध्यात्मिक कल्याणको कामना गर्दै सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई विश्वरूप धाममा